0: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकारी गरौं।
1: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
2: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
1: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
2: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
3: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
4: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मनै घर सिजार सेक्ल।
5: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परे सान हो गेल बाटु। मिल्बो मिल्बो निकरत का कैन हो का?
4: मिस्तरान बर्जनाउकन घर हेरो न, कटा सुगुर बनैलबाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्रफे पटानी हुइन कि गुङ्गुवा बुढो हो न, कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए।
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
7: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर, कैलाली।

0: तपाईलाई थाहा छ,
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस्तो?
0: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा, जइबे तो समाधान हुई जाई।
0: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाय।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, हुटला झर्ना, कपारके तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर रफिंके बिहानी 9 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी को स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम अपने उक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेघाट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मा फिसुन टिरहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से आज शुक्ल पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा व ब्याज जयन्ती पर्व मनाइकी डलपुर घाट में निर्माण लोकजुंगे पुल सर्कल पुल मरमत किलाक निर्माण कंपनी आज टीकापुर मैकी जिला प्रशासन कार्यालय टीकापुर द्वारा 40 स्थान राहदानी हुलाक सेवा मार्फत वितरण ओ संसदीय सुनवाई समिति के बैठक बैठी पूरा खबर असार शुक्ल पूर्णिमा के दिन आज गायत्री दीक्षा वेद मंत्र सुनेर शिक्षा दिन गुरूजन प्रति सम्मान भाव प्रकट करके गुरू पूर्णिमा पर्व मनाइटी गुकी अर्थ अंधकार कलक प्रकाश बुझे ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार के नाश करने व्यक्ति हैं गुरू कना तंत्र शास्त्र और धर्मशास्त्र के पुस्तक में उल्लेख करना बट युवा अंधकार के नाश करके जीवन में उजार फैलना व्यक्तित्व तो हने गुरू कही जाके कि असिन गुरू हमार शास्त्र के बरभा में विष्णु और महेश्वर के रूप में समेत मल्लब माता पिता देसिन गुरू फे देवता सम्मान मान के आचार्य देवी भाव कही जात गुरू पूर्णिमा के अवसर में यह दिन धीरेसिन विद्यालय एवं संघ संस्था के कार्यक्रम करके शिक्षा दीक्षा देना गुरू प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करना कर जात आस वेद ऋक वेद यजुर्वेद सामवेद और अर्थवेद करके चार भाग में विभाजन करके एक और अर्थ बुझेना सरल संस्कृत भाषा में 18 पुराणु 18 उपपुराण के संरचना करहुना वेद व्यास के समझना में ब्याज जयंती मना जाए असार शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जन्मला के दिन व्यास जयंती मना कर जाए कैलाली ओबरदिया जोड़ना डौलपुर घटवा में कर्णाली लदिया के ऊपर बल्लक झुलुंगे पुल चिरकलवा पुन बल्लक कुछ महीना में पुल के कुछ भाग चर्कलवा झुलुंगे पुल बनरपाछा हौसलक नागरिक र पुल के कुछ भाग में चर्कलपाछा निराशुलबाट चर्कला पुल मरमत केलाक निर्माण कंपनी टोलिया काठमंड बसे टीकापुर ऐनाहुलबाट पुल निर्माण थानी निर्माण सेवा कला रहे पुल चिरकलपाछा विषय में थप जानकारी दिए निर्माण व्यवसायी विक्रम बस्नेत बोटिलोट भ्याट बाहेक 15 करोड़ 73 लाख निर्माण हुलक पुल की लंबाई 48.13 मीटर चौड़ाई 1.60 मीटर रहता नेपाल सरकार के झुलुंगे पुल विभाग अंतर्गत बनलक पुल के 5 ठो मुख्य अन्य सहायक के 11 ठो पिल्लर रहलबा इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर हुलाक सेवा मार्फत 40 ठो राहदानी वितरण कलबा इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर हुलाक सेवा मार्फत राहदानी वितरण शुरू कला गरीब 2 महीना के अवधि में 40 ठो राहदानी हुलाक सेवा मार्फत वितरण कलक जानकारी दिलबाट इलाका हुलाक कार्यालय टीकापुर संघके समन्वय सहकारीमा गैलक जेठ 20 गते से राहदानी हुलाक सेवा मार्फत वितरण कलक शुरू कर दिलवा जेठ 20 गते से साउन 12 गते समय इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर हुलाक सेवा मार्फत 40 ठो राहदानी वितरण होस्याक इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर के राहदानी शाखा के कम्प्युटर अपरेटर अनिल डौरा जानकारी दिलबाट इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरमा राहदानी बनाएकला फारम भर्ना क्रम सेवा गरी राहदानी घरमा पुगे कुछ कारणमा आके लेनाकलक विषयमा खुलाइ पनाओ ओ अनुसार कार्यालय वकर व्यवस्था गर्न करलक कम्प्युटर अपरेटर डंगोरा बोटेलबाट नेपाल सरकारको 2082 साल चैत 13 गते बैठक मन्त्री परिषद बैठकमा चाहिँ स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची के बुदा नम्बर 27 मा असिन व्यवस्था कलबाट उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न क्रम राहदानी हुलाक सेवा मार्फत वितरण कर्ति आईटी रहे एकर इलाका प्रशासन कार्यालयकै कार्यक्षेत्रभित्र के सेवा गरी राहत पुग्न अपेक्षा कलक इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरके प्रमुख तारानाथ पनेरके कहाँ रहलबा खोज खबरमा एकरी विश्राम विश्राम पासा फेसे विश्राम तिरे विश्राम उदायक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
2: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एण्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे।
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स।
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे। कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि।
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस।
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको।
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड दिइने।
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने।
2: आईसीटी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने।
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाइफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खानेपानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको।
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने।
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुर कैलाली।
3: त्यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
4: तपाईँ एक्लो कहाँ छ श्रेया, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
3: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ।
4: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त। यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
3: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकेछ जस्तै यार। अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
7: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
6: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर। भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-770। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
0: विश्व विश्राम पाछा फिर्से स्वागत बा। हाल देशभर मनसुनी वायुकी प्रभावपूर्वक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनाएर बा। हाल मनसून के न्यूनचापीय रेखा नेपाल के पूर्वी भूभाग में सरदर स्थान के आसपास में तथा नेपाल के पश्चिम भूभाग में सरदर से उत्तर तर्फ रहल बा। वकर प्रभाव हाल कोशी गंडकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश में साधनतया बदलीलग्न बा। मधेश बागमती गंडकी प्रदेश के तराई के भूभाग में आंशिक बदलीलग्न बा। बागमती प्रदेश के कुछ ठाव कोशी गंडकी लुम्बिनी कर्णाली प्रदेश के कम ठाव हल्का से मध्यम वर्षा हुई रहता। आज दिन के फिर देश के हिमालय पहाड़ी भूभाग के तथा बागमती गंडकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में साधनतया बदलीलग्न बा। मध्य प्रदेश तथा कोशी प्रदेश के तराई भूभाग में आंशिक बदलीलग्न बा। देश के हिमालय भूभाग के कुछ ठाव मध्यमसम के वर्षा के संभावना बा। देश के पहाड़ी भूभाग के कम ठाव चट्टैंग सहित मध्यमसम वर्षा के संभावना बा। बागमती गंडकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के ठाव तथा कोशी प्रदेश के तराई मध्य प्रदेश के कम ठाव चट्टैंग सहित मध्यमसम के वर्षा के संभावना बा। कोशी बागमती गंडकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के एक दुई ठाव भारी वर्षा के संभावना बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के एक दुई ठाव फिर भारी वर्षा के संभावना बा। आज रात के देशभर साधनतया बदलीलग्न बा। देश के हिमालय भूभाग के कम ठाव मध्यमसम वर्षा होने संभावना बा। देश के पहाड़ी भूभाग के कुछ ठाव चट्टैंग सहित मध्यमसम के वर्षा के संभावना बा। तराई के भूभाग के कम ठाव चट्टैंग सहित मध्यमसम के वर्षा के संभावना बा। कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के एक दुई ठाव भारी वर्षा के संभावना बा। बाल बालिका के अधिकार के सम्मान संरक्षण प्रवर्धन और परिपूर्ति के लाग बन्न कानून एकीकृत हुन आवश्यक रहेको जोड़ देलाबाट ओल्ड भिडर इंटरनेशनल नेपाल के सहयोग तथा बाल कल्याण संघ के आयोजना में छलफल हुँदा छुट्टा छुट्टै रहेको कानून एकीकृत हुन कानून बुझ्न औ कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन दोहोरो बस्ना व्यवस्था कम हुन बाल बालिका के अधिकार संरक्षण के व्यवस्था एकठो ठाउँमा पैना हो सेवा प्रभाव थप प्रभावकारी हुन हुलक एकीकृत रूपमा निर्माण गर पर्नाम जनप्रतिनिधि सरकारवाला सकुझन साझा बुझाई हुलक कार्यक्रम सहजकर्ता तथा बाल कल्याण संघके कार्यक्रम अधिकृत राधिका गिरी ओटिलोबाटी कार्यपालिकाकी सदस्य मन्जुबिका पालिका बल्ल केन तथा कार्यविधिबारे समुदाय स्तरमा फेरि जानकारी दिन आवश्यक लग बोटैटी टोल विकास संस्था आमा समूह तथा थेदुसिन बैठक मार्फत समुदायसम्म पालिका बाल बालिका सम्बन्धी हुलक नीति कानून बारे जानकारी दिए पर्ना बुटिलो बाटी टीकापुर नगरपालिका के जनस्वास्थ्य अधिकृत कमल बहादुर रावल बाल संरक्षण पोषण लगायत के क्षेत्र में प्राथमिकता देके पालिका काम करती रह बोटेटी स्वास्थ्य शाखा फे पोषण प्राथमिकता देके वर्ष में दुईचो पोषण लेखाजोखा करना कलक बोटिलो बाट वहां बाल बालिका के सकु सरकार के विषय में हुलक अभिभावक विद्यालय समुदाय सकु चराखो हुई पर्नाओ जनचेतना फलाई पर्ना बोटिलो बाट महिला बाल बालिका शाखा प्रमुख संगीता शाह पालिका आफ्नो संघ संस्था के सहयोग में बाल संरक्षण सधिना उद्देश्य एन कार्यविधि थियो निर्माण हुलक हुलेसेपी बाल बालिका संघ सम्बन्धित कानून एकीकृत रूप में हुलक सह सुनाका के महसूस हुलक एकीकृत कार्यविधि निर्माण केलाक संघ संस्था के सहयोग लेना बोटिलो बाटी खुश खबर में फेरसे विश्राम विश्राम पासा फेरसे विष्णु तिर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
8: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना
9: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
8: तपसिल
9: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र 1 प्रति फोटोकपी
8: बैंकको सक्कल चेकबुक र 1 प्रति फोटोकपी
9: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र
8: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति
9: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
8: थप जानकारीका जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
9: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
10: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
11: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588।
12: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् तो?
13: मै नै जाइ, उहाँ आफ्न अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
12: उहे मारे तो तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामे लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
13: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
14: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाढ़, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
15: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846777417।
0: विश्राम बाछा फिर से स्वागत बा। संघीय संसद मातहत के दुई संसदीय समिति बैठक बटीबाट संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रीय सरकार समिति ओ संसदीय सुनवाई समिति बैठक बस्ना कार्यक्रम तय हुआ। संघीय संसद सचिवालय के अनुसार संसदीय सुनवाई समिति के बैठक में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के लाग प्रस्तावित मान बहादुर कार्की विरूद्ध उजुरी देना उजुरीकर्ता संघ छलफल करना कार्यक्रम वस्तुका प्रमुख आयुक्त में प्रस्तावित कार्की समिति समक्ष आमन्त्रण करके सुनवाई करना बा। समिति के बैठक बिहान के 11:15 बैठक हुईबाट समिति के मंगलवार आयुक्तमा प्रस्तावित गुरू प्रसाद अग्ले हो डाक्टर राजीव सुब्बा आमन्त्रण करके सुनवाई करला रही। पुस्तक संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रीय सरकार समिति के बैठक में आर्थिक वर्ष 2083-84 के वार्षिक कार्य योजना संबंध में छलफल करना कार्यसूची बा। समिति के बैठक बिहान के 11 बजे बैठना हुई। यह समाचार संग खोज खबर बराइल जेनासी पहले खबर के मुख्य शीर्षक फेर से एक चो अषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा गुरू पूर्णिमा हो ब्यास जयंती पर्व मनाइकी डलपुर घटपा में निर्माण लग झुलुंगे पुल चिर्कल पुल मरमत के लाख निर्माण कंपनी आज टीकापुर मनाइकी जिला प्रशासन कार्यालय टीकापुर द्वारा 40 स्थान राहदानी हुलाक सेवा मार्फत वितरण संसदीय सुनवाई समिति की बैठक बैठी लीटा बुकला खोज खबर तह प्राविधिक मित्र छपीलाल चौधरी धन्यवाद देखी अबुकला खोज खबर के महिषा चौधरी बिराई टू या 12 बजे के खोज खबर सुन सिक्दी सामुदायिक रेडियो टीका प्रफ्रम सुन्ती रवि।

0: ni payapunu tapa dasta dharmana rasarasa angnama lana pilase inaraha
1: ekka gatina hamra sahyog kai khal denti bati dien motorcycle ghuma ka dharne karina
0: bitha bitha dharmana rasarasa mor pa cha baithai ko ek jana dharmana pakar ka baithi upata kendra sam pugaibir brahmya behos swisek na pila korse pasa se pakar ka baitha partha ka
2: dharmana agar hina kai kamai pakar ka baitha tu sunil ji अपना देशी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पडंसक ब्रेमेन उपचार केन्द्र लेना सजिलो हुई बा
0: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था कतना ठमटा मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक उपलब्ध बाट सजिला से वो झट्ट पाजिला से ब्रेमेन चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो बिना मेर का सुचा का लगक एंटी भेनम हुई उपचार केन्द्र में ले जाए पड़ता
1: अपना उम्र जैने करी ना मई द्वान लगा करके ला दे
0: वहां न कतलक सपक फोटो खींचना बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो खिला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
2: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाए नहीं तो ढील हुई थी
3: सफर डल डालन कर से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिहार में अपना वो मोटरसाइकिल चालक के बीच में सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगत एंटीवेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में ले जा रही सप्प कटलसे मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org में हेर सेटा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: पानीकै कारणले लाग्छन्
7: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
8: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
6: डेलिभरीका लागि
8: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
6: टिकापुर कैलाली
9: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772
7: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: का पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज था का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गटिलो ठाउ से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाती ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
4: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ
3: तपसिल
4: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र 1 प्रति फोटोकपी
3: बैंकको सक्कल चेकबुक र 1 प्रति फोटोकपी
4: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र
3: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति
4: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
3: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600071024 ओ 98046

0: कापी रहिथ कबु पेन्सिल रहिथ कबु झलै फटाका आजिथ काकना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोले फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से नानम
0: तो कहाँ से लन बहु तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबु लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या को उपचार तत्काल पॉलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुर
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 98484-27359 र 98-48-43-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बारो टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै
5: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम को कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना
6: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमका लागि तपसिल अनुसारको जनशक्ति आवश्यक परेकाले इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ
5: जनशक्तिका विवरणहरू
6: सहायक प्राविधिक संख्या एकजना पूर्णकालीन योग्यता कम्तीमा 12 कक्षा उत्तीर्ण रेडियो प्रविधिको बारेमा अनुभव र ज्ञान भएको
5: पत्रकार संख्या एकजना थारूभाषी पूर्णकालीन योग्यता कम्तीमा स्नातक रेडियो समाचार लेखन कार्यक्रम उत्पादन सी भएको र जियोग्राफी जानेको
6: सहायक प्राविधिक संख्या एकजना आंशिक योग्यता कम्तीमा 12 कक्षा उत्तीर्ण अडियो भिडियो सम्पादन सिप भएको
5: बजार प्रतिनिधि संख्या एकजना आंशिक योग्यता लेखा बजार शास्त्र विषयली कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको स्नातकलाई ग्रहायता
6: समाचारदाता संख्या एकजना स्ट्रिङ्गर अल्पसंख्यक थारू दलितलाई प्राथमिकता योग्यता एसएलसी वा कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको पत्रकारिता अध्ययन वा अनुभवी
5: पारिश्रमिक संस्थाको नियमानुसार हुनेछ इच्छुक उम्मेद्वारले साउन 15 गतेसम्म आफ्नो व्यक्तिगत विवरण शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नागरिकताको प्रमाणपत्र र तालिम अनुभवका प्रमाणपत्र सहित सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएममा निवेदन पेश गर्नुहोला थप जानकारी चाहिएमा फोन नम्बर 98-11-63-36-33 सम्पर्क गर्नुहोला
7: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी
8: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न

0: चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक टिकापुरमा
1: यही साउन 16 गते तेस्रो शनिबारका दिन
0: कोहलपुर मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ मानसिक लागु औषध तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहन बेलबासे एमबीबीएस एमडी बिरामी जाँच गर्न चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
2: डीएनए सेवाहरू बेला बेलामा मुटु ढुकढुक हुने, हात खुट्टा काप्ने या चिसो हुने, धेरै पसिना आउने, मनमा छटपटी हुने, ज्यादै झस्कने, तर्सने या डराउने भएमा,
0: असामान्य रूपमा धेरै लामो समयसम्म टाउको दुखी रहेमा,
2: बढी रिसाउने, झिजो मान्ने, झर्कने, जिउ दुख्ने, दुब्लाउने, निन्द्रा नलाग्ने, भोक नलाग्ने भएमा,
0: काम काजमा मन नलाग्ने, त्यसै दिक्क मानेर बस्ने भएमा,
2: असामान्य रूपमा एउटै कार्य बारम्बार दोहोर्याउने भएमा,
0: धेरै रक्सी खाने वा लागु पदार्थको सेवन गर्ने भएमा,
2: आत्महत्या गर्ने इच्छा उत्पन्न हुने तथा आत्महत्याको प्रयास गरेमा,
0: याद गर्नुहोस् है,
2: यदि यस्ता लक्षणहरू मध्ये कुनै एक लक्षण मात्र पनि धेरै लामो समयसम्म लगातार देखा परेमा यसले कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक रोग लागेको हुन सक्ने संकेत गर्दछ।
0: त्यसैले सम्बन्धित बिरामीहरूले नाम दर्ता गराई ढुक्क हुनुहोस्।
1: डाक्टर आउने दिन साउन 16 गते तेस्रो शनिबार,
0: स्थान चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 091-560-856 र 98-580-29700।
3: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
4: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
5: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
3: डेलिभरीका लागि
5: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
3: टिकापुर कैलाली,
0: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98-017-10-672। स्वास्थ्यका लागि पानी,
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
7: जयगुरु बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपन के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज से विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम छोट मिट के सलाह के बैठक सकू रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग स्वागत के संगे अभिवादन कर चाहत मैं मिशन उमी के टेक में बैठ के साथ देते बाबू और रत्नापुर मगर और मई बाटू अपन के अपने संग्रह मैं मिशन संगारी प्रसिन बहाल खबर बेग्लो कुशल मंगल आराम हुई भी मैं एकदम आराम बाटू अपने एकदम आराम हुई भी कना भरपूर आसन बाटू जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपटाल में यात्रा में जहां रह सकें कार्यक्रम में सहभागी जन भी कार्यक्रम में आई भी कना मैं अपने कन अर्जी अनुरोध और निवेदन कहना चाहूं तो कार्यक्रम में चाह सहभागी जन ऐसे कर भी कार्यक्रम में ऐसे कर भी अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता रही, रमाइलो गप रही और रमाइलो बातचीत रही का नाम अपन जानकारी कहना चाहूं। और आज के दिन विशेष करके अपने के रोजल खोजल सोचल मन परल गीत सुनैना हो तो जे जहां हुई भी कल से थारो भाषा के कोई भी गीत सुनना मन हुई कल से मन बताई गीत के बोल यही हो कह के गीत मन पड़ना के दुटो कारण गीत ई एल्बम या फिल्म के हो कह के नाम बताइबी और अंतिम एक जन के नाम ले भी करे से हम गीत अपने होंगे जरूर सुना। तो कार्यक्रम में डायल करते कर भी अपन रोजल खोजल सोचल मन परल छाटल गीत सुने के लग चाहिए ऐटे कर भी तब सम कार्यक्रम के शुरुआत में हमरे अपन फरमाइश से गीत जोड़ब गीत के पास समय नहीं बाटू डायल करते कर भी सुने 91-561-255 लाइन खोल

0: हजुर बेग्लै रमाइलो बिजुली कार्यक्रममा बाटोमा मिशन मिकेसा भेटै बाबु रत्नापुरमा गरौँ यो रेडियो टिका प्रथम 101 MHz अब कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरी आफ्नो रोजल खोजल सोचल मन परल गीत चाहिँ आफ्नो सुनेक पर्ना रह त आफ्नो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी जनैबी कार्यक्रममा आइदिएर चाहिँ आफ्नो हाम्रो रमाइलो गफ हुई रमाइलो बातचित हुई कनामै चाहिँ हाम्रो फटाफट चाहिँ आफ्नो हाम्रो डायल गरी कनामै आफ्नो जानकारी गर्दै बाटो कोही टेलिफोन लाइन माइकलबाट म बोल्न चाहन्छु हजुर राम राम
1: राम राम हजुर
0: सीतारा माफ गरी नारायणजी हो
1: हजुर
0: असिन भाइ नारायणजी हाल खबर आज घाम लागल बने
1: हजुर
0: और बताई आज आजकल दिन कैसे के बिताए बाटी
1: अरे फटो फटो हो फिर काम मिलते घूमबो हे घामे घामे ना
0: घामे घामे
1: मिलते सामान मिलते दौड़बो फटो फटो मिलल बा कपल
0: आजकल तो
1: बखर काम लागल बाके
0: आजकल तो जस्ते मनाइन भेटैले र बना अपन ग्राहक उकरण भेटैले र बस्त के कल करके बोलाइट हुई नै
1: हजुर हजुर वस्ते हो कल करके तो हो बोले ना जमाने वस्ते बा मोबाइल के जमाना आइल ना हमारे
0: तो अस्ते के बोलाइट हैं बस पुग बो काम करबो अस्ते दिन चलते रहत बस समय बीतले के पटै नै चलत हुई नै
1: हजुर हजुर
0: हजुर कार्यक्रममा सहभागी जनैली आज ठ्याक्कै कन ठाउँ से फोन गर्ती हमन
1: हाम्रो सबन्नापुर बाटी हजुर
0: ओके कार्यक्रममा सहभागी जनैली खुसी लागल आज हाम्रो अपने है कोन गीत सुनाई रोटिन अपने सुनै थी आज हाम्रो सुनाब अपने है कोन गीत सुनि दहितान लवरिया जवान हो गेल बापरे गीत हाम्रो सुनाब और गीत मन पर्ना के दुईठो कारण
1: गीत सुनबाइलो लागत
0: यी गीत किन सुनाइ चाहती एक जन के नाम ली
1: अपन मैडम कहपल शर्मिला
0: ओके अब अगला विदा हुई राम राम
1: राम राम
0: वहाँ फोन कैले रही नारायण चौधरी जी सुवर्णापुर से रमाइलो गफिल रिक्सा चलैठ रिक्सा के सामान बोक्नवाला मोर रिक्सा हो गई कि वहाँ पर रखे हमन और नियमित मैं रिक्सा में सुनती रहूँ और काम करती रहूँ और कार्यक्रम में सहभागी जनती रहूँ कहके हम जानकारी करते हैं अठी पर वहाँ के फरमाइश गीत बार दही तान लवरिया जवान हो गईली गीत जोड़ हमें गीत के पास महीने बाटू डालकर तक शून्य 91565 अर्थात 09156125 लाइन खोल रही बात तो सब इंजॉय करिए गीत से

हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत जोड्ने कार्यक्रममा नारायण चौधरी जी के फरमाइश में परल गीत रही अपने हुकन गलत आफ्नो विज्ञापन रोजल खोजल सोचल मन परल गीत सुन्न मन हुई गरेछ कार्यक्रममा सहभागी जनाए सुन्ने 91 5 61 255 0915 6 1 2 5 5 लाइन एकदमै खुल्ला भयो कार्यक्रममा सहभागी जनाइ गरेछ अपने हुकन हमार रमाइलो गफैकानमा प्रोग्राम जानकारी गर्दै बाटो तो फटाफट डायल करबी और कहबी मैं ई गीत सुनने चाहू गीत के बोल ई हो गीत मन पर्ना के कारण दुठो ई हो और ई एल्बम या फिल्म हो अंतिम एक दिन के नाम नहीं बिगल से वो गीत हमें अपने जरूर थे सुने ना प्रयास कर का नाम है आप लोग जानकारी करती बारो तो जे जहां भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में बिपटल में यात्रा में जहां रले से फैन कार्यक्रम में सहभागी जनेगी और विशेष करके ई कार्यक्रम अपने हुकन के लगने हो अपने हुकन के संगे संगे सहभागी जने ना हो और विशेष करके ई कार्यक्रम में अपने हमार गफ हुई ना हो और अपने के रोजल खोजल सोचल मन पर गीत सुने ना हो तो फटाफट चाहिए डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनते कर भी का नाम अपने जानकारी करना चाहम कहे कि कार्यक्रम में अपने हुकन के संगे चाहिए रमाइलो गफ करना हो का नाम कहना चाहम और अपने के रोजल खोजल सोचल गीत सुने ना हो तो करीब करीब 1:45 बजे से हम यात्रा कर दी अपने और हमारे रमाइलो गफ हुई यात्रा हुई आज घाम लागल बट्टिकापुर में अपने ठाव में कसिन बा मौसम और मौसम लागत महीन अपने ठाव में अपन कसिन बा घामे लागल बा कि बद्री बा कि कसिन बा ज्या जैसे रहे सेवन अल्छी के समय चाहिए जरूर बा ओके तो अल्छी समय है सदुपयोग करे हमन सहभागी जन भी 0915 61 255 तो ठीक ठाक गीत जोड़ब हमारे अपन फरमाइश के गीत के पास समय अने बाटो डायल चाहिए करते कर भी 0915 61 255 के लाइन खुल बा तब समय अठी बार एक गीत जोड़ब गीत के पास समय अने बाटो अपने अपन रोजल खोजल सोचल गीत सुनने के लगे ऐसे कर भी तब समय के लगे हमारे फरमाइश के गीत अपने हुकन के लगे।

हजुर, रमाइलो गीतकी बाजा फेन्स स्वागतमा कार्यक्रममा बाटोमा माई मिसन भर्खर रेडियो खरल हिबिकल सी हो रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज कार्यक्रम छोटमिट छोटमिटमा अपने गरो हाम्रा रमाइलो अपने गरो रोजल खोजल सचल गीत हामीले सुनै थियो तो डायल गरी हाम 0951 61255 और कहीँमै गीत सुन्ने चाहटो गीतकी बोल यी हो। गीत मनपर्नाकै दुईठो कारण यी हो और गीत यी एल्बम या फिल्म के हो नाम बताइ विकल से गीत हम अपने होकर जरूर सुनाब तो फटाफट चाहिए डायल कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनेबी 0915 61255 के लाइन मार्फत तो फटाफट चाहिए डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनेते कर भी अपने हमारे रमाइलो सहभागिता रही रमाइलो गफ रही रमाइलो बातचीत रही का मैं अपने होकर कहना चाहम तो फटाफट चाहिए डायल करते कर भी 0915 61255 अर्थात 0915 61255 लाइन खोला बा कार्यक्रम में सहभागी जनाजी कर से अपने को हमारे रमाइलो गफरी का नाम है अपने और जी अनुरोध और निवेदन करना चाह रू तो करीब करीब 1:45 बजे से हम यात्रा करते भी दोपहर समय हो ई समय अलसी समय हो आजकल काम धंधा बिल्कुल शायद अपने को मल वल छीट अठू भी मल छीट के वैसे गारू भी कोई कोई आजकल घास कटना फैन बिल्कुल कम रहा छगरी बकरी पल रही भी भैंसिनिया पल रही भी शायद गैया पल रही भी तो शायद कटना हुई और नहीं तो लगभग आप तो सुनने हो गिलवा कहे कि सबके घर में पावर टिलर हो के आजकल घास कटना फैन एकदम कम हो गिलवा गोदगाट बात ही मैंने गोदगाट कम हो गिलवा का नाम है जहां हम कहती अब ठीक छाव की जोड़ के पास हमें नई बारो डाल करते कर भी 0915 61255 लाइन खुले बात अब सबका इंजॉय करी रमाइलो गीत से

0: हजुर, मजा मजा गफ गर्दै गर्दै गीत सुन्दै सुन्दै अठी एकैछि व्यापारिक विश्राम लेना बेला हो गिल माता मारे एकैछि हाम्रो व्यापारिक विश्राम अर्जा विश्राम के पास मैने बाटु रेडियो छोड़ के कहूँ फेरा जेबी तत्सम एकैछि सर कमर्सर ब्रेक ब्रेक के पास मैने बाटु डायल करते कर विश्व 91.5 61.255 लाइन खुले बा
1: नाता छावा सापन कुछ नहीं कराए सम सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपने चल गए था कुछ कराए था वो सब कुछ सांप बिखाह थे नहीं रहता
2: बिखाह हो कि नहीं हो कसी कसी ना कंदाई
3: लिया नेपाल में पाँच दिन बिखाह सांपन का विषय मसून एक थोड़ा ठा गरे था जो उन खास कह कर रातिक समय में घर भीतर बैठा सेक था ये कटल से निबटाई फिर से आकर तर कटल पास है देह भाग जो निचलना कह कर सास ठहरा जो निशेकना में से लक्को हो सेक था और रठा डोम जो उन बड़ा रिसाहा में ही रठा इनकर फाट फूले था डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना ओ

0: संस्कृत संज्ञा बिहान देख पर्छ निक्र कटल सेखे लक्व अभिषेक था ओ औरर छ कैली जाटक साथ निक्र कटल कलसे कटल घाक सुई था ओ बरा कर से बठे था रकत थे पाती रोकर रकत बहना हुई से था ओसे का हमार देशक तराई सक्कु भूभाग में पा देना बगोपने न फुनका रना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा
1: बर्खा छ्या को अनाज बिग्रिना समयमा तापन का कटाई अथवा दसाई का घटना ढिर बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण तापन का बचारा नासिबेर तापन का दसाई का घटना ढिर बिना कर लग पा जाए
2: ढिर जसिन तापन का दसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
3: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहे सक्दै था
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कापी रहिथ कभी पेन्सिल रहिथ कबू झनै फटाका आजिथ का कना हो बाबा के ओष्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से त लड़का सामान निहराइत।
1: ओहो ये बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरैठी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कैठ कबू पेन्सिल हेरा कैठ कबू झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिटो।
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रटगैया झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेन्सिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
4: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबै का लागि जानकारी गराइन्छ।
3: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फ का शैक्षिक कार्यक्रमहरू
4: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
3: प्रवेश परीक्षा संचालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
4: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
3: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
4: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
3: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
4: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चित तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
3: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
4: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड दिइने
3: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
4: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
3: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
4: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
3: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
4: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
3: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली।
5: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल।
1: अरे का करू री बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
5: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोपराइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।

हजुर व्यापारी विश्रामको बाजा पनि स्वागत बा लब लब कार्यक्रम निर्धारित समय डगर काटे लागल अब हाम्रो विदा मग्न बेला हो गेल हाम्रो यात्राबाट रेडियो सुनको साथ दिने आफ्नो धन्यवाद टेक्नोवेदको साथ दिने आफ्नो धन्यवाद कलकरको साथ दिए सकुसँग आएको धन्यवाद यति अन्तिम एक ठोर रमाइलो गीत छोर्ती जहाँ रवि स्वस्थ रवि व्यस्त रवि खुसी रवि कहती अन्तिम एक ठोर रमाइलो गीत छोर्ती माई मिसन आज्ञा चाहम और मिके साथ दिए बाबु रत्नपुरमा गएर धन्यवाद यति माई मिसन आज्ञा चाहम राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पास शुभ रहे रेडियो टीका पुरे सुनते करवी।

0: है रजनी वहाँ 62 नंबर लक्ष्य बात दिखाओ तो अच्छा दिखाओ तो
1: मुर्गी दाना देना जाना मैं लक्ष्य खा देती अब ना
0: एक तो तपा का मुर्गी न फा रखे लक्ष्य से डुरेले से बक्खा की आनो हारी छत्ता
1: तापन घिस्काई चलाई नहीं होती नहीं तो अमन दस क्या कर बेन घर भीतर आए लागी कलक्य भगाई दी
0: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी व खादी कहीं का भगाई खोज लखो का
1: आरा में कीड़ा फटिंगा मुँह साफ सीधा निचा कर कहीं का फलाम का जारी लगा बात तपा मुर्गी खेती बुगाई नहीं थे कि बेन अपना ना दासी दूर बिना
0: हो बिना था का करना हो सपोर्ट देखती की डर नागा लग्न रही था देव सपोर्ट आप पर घूम का बारी वो कर दिल था
1: हमरे के सापन से डरे ना नहीं होगी मुखर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चले लगी पति रक्षा करत लाग व अपन बचाव करत लाग शाम दस ना कर था
2: सापन से दूर रही सापन रिस नी लगाए व नी जिस के साप मने देख डरे था नी चला कर दूर रहना सिर साप नी डस्ट तर मुखर खेना फाजा बाहर निकल जाना बस घास काटा बेल छाला बेल ड्यांगा बेल छू बेल से मन मही मारक लाग बाट कना समझ कर पट्टी रक्षा करना क्रम में साप दस लाख रठ मन सापन व्यक्ति की मारक लाग रठ उसी का कर बेल फिर साप दस लाख रठ
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी था पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सिद्धिथा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा कृषि स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना खुलेको सूचना
6: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत स्कूल अफ एग्रिकल्चरमा स्नातक तह बीएससी एजीमा नियमित तर्फ 6 जना र सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी 10 जनाका लागि भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ
5: स्कूल अफ एग्रिकल्चरमा बीएससी किन पढ्ने
6: सुविधा सम्पन्न भवनमा आधुनिक प्रयोगशालामा अभ्यास गराइने
5: आफ्नै फार्म हाउसमा अभ्यास गराइने
6: सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लाबाट 1-1 जना र प्रवेश परीक्षाको सूचीमा उत्कृष्ट विद्यार्थी सहित नियमित तर्फ 25% आरक्षित छात्रवृत्ति कोटा रहेको
5: अन्य विश्वविद्यालयको तुलनामा सबैभन्दा कम शुल्कमा पढाइ हुने
6: स्नातक उत्तीर्ण सबै विद्यार्थी स्वदेश र विदेशमा गई अध्ययन रोजगारी र उद्यममा संलग्न भइसकेको
5: अनलाइन र अफलाइनबाट समेत फारम भर्न सक्नुहुनेछ
6: आवेदन फारम भर्ने मिति 2083 साउन 25 गतेसम्म रहेको छ
5: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन 2083 साउन 30 गते बिहान 11 बजे प्रवेश परीक्षा केन्द्रहरू स्कूल अफ एग्रिकल्चर टिकापुर काठमाडौँको लागि पछि निर्धारण गरिनेछ विस्तृत जानकारीको लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय स्कूल अफ एग्रिकल्चर टिकापुर www.agriculture.fwu.edu.np मा लगन गर्न सकिनेछ
6: सम्पर्कका लागि 091560265 98491010487 98486083006 र 98462878174 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दी गुआज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनी ना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आतु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नि सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41 208 और 98486 39 261

0: छैन कि नि औ वहाँ 62 नम्बर लक्ष्मी बा देखाउ त हत्ता लेखाउ त
1: मुर्गिन दाना देना ज्यादा म काकर लक्ष्मी खा जति अब न
0: एक तो तपा बाका मुर्गिन खा रखे लक्ष्मी से डुरेले से बक्सा कि आनो हारी छ त
1: तापन घिस्काई चलाई नि होइकी नै त अमन दत स्याकर बेन घर भित्र आइ लागि कलसे भगैबी
0: पारक भित्र पैटका मुर्गी मुआडी खाडी खै भगाइ खोज्लक का
1: आरम किरा फटिङना मुर साफ सिर निस्याकर कै फलामको जारी लगाएर बाट तप्पा मुर्गी खेती पुगाइ नि कि बेन अपना दाठी डुर र बिना
0: हो बिना त का कर हो तप्पा देख्ति कि जन नाग लग्न रहेछ देव तप्पा त अपना घुम्का बारी ओसल गिन्छ
1: हाम्रो केल सापन से डरै नानी होली मुखरथी अमन से डरै था यदि क्यों जान अनजान में चलै लगी प्रतिरक्षा करत लाग वा आपन बचाव करत लाग ताप दसना कथा
2: सापन से दूर रही सापन रिस नि लगाई वा नि जिस्के साप मने देख डरै था निचलाख दूर रहलसी साप नि दस्त तर मुक्र खैना ख्वाज बाहिर निस्कर मेला घास काटा बेर ख्याल बेर ल्याङ्ग बेर छुबेको छ मनै मही मारकलाकबाट कना सबसक प्रतिरक्षा कना क्रममा साप दस लाख रह मनै सापन व्यक्ति कि मारकलाग रह ओसीको कर बेर फेर साप दस लाख रह
3: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाएको लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा ह्याएर सेती था
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमकी सन्धिक 5 बजे थारू भाषाकी खोज खबरमा आफ्नो स्वागत बा खोज खबर सेमै सीता चौधरी के राम राम अपने उक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रपात्र और नेपाली पात्र में फिर सुनती ढलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से गुरू पूर्णिमा के अवसर में टीकापुर योग आश्रम कार्यक्रम गुरू कलक अत्याधुनिक चेतना के संसार हुलक गुरू पृथ्वी श्री के कहा दूरपश्चिम के अस्पताल में दोसरो दिन फिर आकस्मिक बाहेक सबको सेवा बंद कर्णाली में आज मुख्यमंत्री के शपथ और विश्वकप लीग टू नेपाल और नेदरलैंड्स

0: पूरा खबर गुरु पूर्णिमा के अवसर में टीकापुर योग आश्रम में कार्यक्रम भूलवा कार्यक्रम में बोलते टीकापुर योग आश्रम के निदेशक पृथ्वी श्री गुरू ज्ञानेन्द्रनाथ अर्पैना आस्थानैकना हुलक गुरू महान हुलक बोटिलोट वहां अत्याधुनिक चेतना जगना शुरू के गुरू योगदान महत्वपूर्ण लग जानकारी दिलवाट वहां के गुरू अर्थ बुझलक जीवन धन्य हुईना गुरू के अर्थ में बुझलक मन के सद खुशी रहना बोटिलोट भौतिक अत्याध्यात्मिक अर्थात चेतना के संचालक बोटेटी मनन के दुनू बार एक मिलना खुजलक जटिलता बढ़ना बोटिलोट वहां आमा फे गुरू बुआ फे गुरू नई हुना बोटेटी कलवाट आमा बुआ हुलक दर्जा को फे ले सेकना ही सेकना गुरू के स्थान आमा बुआ के स्थान गुरू ले नई सेकना बोटेटी गुरू भीतर श्रद्धा भक्ति हुना बोटिलोट कार्यक्रम में टीकापुर योग आश्रम के अध्यक्ष नरबहादुर कठायत पृथ्वी गुरू के योगदान के टीकापुर योग आश्रम मल्लक उज्यालो ज्योति मल्लक बोटिलोट वहां सबको जाने योग में नियमित जोड़ के स्वास्थ्य लाभ लेना अनुरोध कलवाट योगा रूपी एना बनेना योग गुरू पृथ्वी गुरू कलक योगदान अतुल्य अलग बोटिलोट कार्यक्रम में संयोग योग प्रशिक्षक तथा साधक सहभागी रही कार्यक्रम संचालन सल्लाहकार सदस्य हृदयराज रेग्मीकर्ण रही नेपाल चिकित्सक संघ के आह्वान में सुदूरपश्चिम प्रदेश के सरकारी तथा निजी अस्पताल में आज दोसरो दिन फिर आकस्मिक सेवा बाहेक सको स्वास्थ्य सेवा बंद करगिवा नेपाल चिकित्सक संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष डाक्टर खगेन्द्र भट्ट के अनुसार बीनगंज स्थित नारायणी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर हुईलक आक्रमण अस्पताल में ढलक तोड़फोड़ के दोषी कानूनी कार्यवाही के मांग करते आंदोलन जारी ढलवाट संघ के चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर हुईलक सांगीतिक आक्रमण अस्पताल में हुईलक तोड़फोड़प्रति सरकार आवश्यक संवेदनशीलता नई देखेको दोषी के ऊपर कानूनी कार्यवाही करना ढिलाई कलक आरोप लगती देशभर आकस्मिक बाहेक स्वास्थ्य सेवा बंद करना निर्णय कलक जनवाद आंदोलन के कार्यक्रम अंतर्गत चिकित्सा हुक्र संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञान पत्र बुझेनाशक आपन कार्यरत स्वास्थ्य संस्था में धरनादेखि विरोध जनन कार्यक्रम फिर तय कलक नेपाल चिकित्सक संघ जानकारी दिलवाट खुश खबर में घरी विश्राम विश्राम पासा फिर से सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा संचालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्ष संचालन भदौ 1 गते देखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट एक वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाइफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खानेपानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 0915600088 र 561-088
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
3: के छ त विकल्प?
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
4: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
0: दाजु हेर्नुहोस् न, भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ। तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ। भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु।
5: के गरौँ त, म यत्रो उपचार गरिसके, कति ठाउँमा लगिसके, तर निकै हुन्न।
0: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा, त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि।
5: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक।
6: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू: ओपीडी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, एक्सरे सेवा, ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा, ईसीजी सेवा, मेडिकल सेवा, ईएनटी सेवा, प्लास्टर सेवा। बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। डाक्टर हेमन्त स्वार, टिकापुर, ब्लक नम्बर 7, गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 0915600595, मोबाइल नम्बर 98484273059।
0: कर्णाली प्रदेशकी नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगल बहादुर शाही बुधबार दिनकै 3 बजे पद तथा गोपेनाथकै सफर लेहलबाट प्रदेश प्रमुख कार्यालय शपथ समारोहका लागि आवश्यक तयार पूरा गर्न जनैलाबाट कर्णाली प्रदेशकै 5 औं मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलकी नेता शाही नियुक्त हुनुभएकोबाट प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी, नेपालकी संविधानकै धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम उहाँ मंगलबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति कल रहे। प्रदेश प्रमुखकै कार्यालयकै सचिव हरिलाल चौधरीकै अनुसार मुख्यमन्त्री दिनके 3 बजे उहाँ शपथ ग्रहण गर्न जानकारी दिएपछि कार्यालय सबको तयारी पूरा कलबाट मुख्यमन्त्रीकी शपथसँग मन्त्री परिषद विस्तार गर्न विषयमा फेरि सत्तारूढ 2 दल नेकपा हो नेकपा एमालेको बीच छलफल जारी भा। मन्त्रालयकै भागभण्डा मन्त्रीकी संख्या तथा जिम्मेवार टुंगैना दुनू दलकै नेताकी बीच निरन्तर छलफल हुटिरहल। एमालेकी एक नेता बटुलोबाट दुनू दलकै बीच सहमति जुटलक। मुख्यमन्त्रीकै शपथ लगत कुछ मन्त्री बफे पद तथा गोपेनाथकै शपथ लिन सम्भावना रहल भा। यद्यपि मन्त्रालयकै बाटफाट वा मन्त्री कुनकै नाम मफे अभिन टुंगो लागल नै हो। प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मान बहादुर कार्की निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सरकार र राजनैतिक दलकै सहयोग जरूरी हुलक बोटिलोबाट सिंहदरबार स्थित समितिकै आज बैठकमा सांसद थुप्र ढलक चासो जिज्ञासाकै जवाबमा उहाँ निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न 3 तहकै सरकार र राजनैतिक दलकै सहयोग जरूरी हुलक बोटिलोबाट उहाँ निर्वाचन आयोग हँ सफल हुइक्लाग सकु दल सकु तहके सरकारमा से ओतह सहयोग अपेक्षा गर्दा उसले कति उजुरके विषयमा प्रक्रिया नै पुगे अलकृत निवेदन हुलक दर्ता गर्न अस्वीकार कलक जानकारी गरेलबाट प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्की निर्वाचनमा पैसा व शक्ति कानूनी रूपमा नियन्त्रण कलक उहाँ राजनीतिक दल सरकार र संचार माध्यम कोनो फेर प्रयोग गर नै हुन कानूनी रूपमा कडाइकै संग पालना करपन्नमा जोड़ दिए आयोगप्रति प्रतिबद्धता रलक बुटिलोबाट उहाँकी कृत्रिम बौद्धिकताकी विषयमा आफ्नो अध्यक्ष व्यक्ति नै हुलक। सूचना प्रविधि मैत्री संरचना बनाइट्यो दलकी बीचमा रेफ्रीकै भूमिका निर्वाचन आयोग हुन विश्वास व्यक्त कलबाट प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्की मतदान केन्द्रमा मतगणना कलक लागतमा फे कम हुलक हाली गणना हुना हुलक निर्वाचन सुधारकै काम फे हुलक ओतर्फ ध्यान देपना उल्लेख गर्दै निर्वाचन के दिन सवारी साधन सुरक्षाकै कारण नै चरिना कति हेबारे थप छलफल गर्ला गोटिलोबाट विदेशमा बैठा नेपाली यहाँ मतदान गर्न उहाँ कुनकी संख्या किन विधि कसिक बढ़िनाका के विषयमा वृहत गृह कार्य जरूरी हुलको नोट चन्ना ओ नै चन्नाका के विषयमा गहन छलफल जरूरी हुलक उहाँकै काहीँ रह। प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्की निर्वाचनकै काम स्वच्छ पारदर्शी ओ विश्वसनीय तरिका सम्पन्न आफ्नो पूर्ण रूपमा काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँ बदरमठ घटैना सबको झालमिलकै निर्वाचन शिक्षा अभियान चलाइपर्न बोटेलोबाट खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछ फेरि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
7: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल।
8: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
7: मिस्तरान वर्जन हो कना घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्टफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुरो हो न कबू कहूँ घुम जाए तो था पाए।
9: यूपीबीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
10: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 43 26।
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
12: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
11: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
12: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
11: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
12: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
11: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
12: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
11: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
12: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
11: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
12: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
11: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80008 र 9825 63 77 72।
13: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
14: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेडस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808।
0: विश्राम पाछ फेरि स्वागत बा अब खेल खबर। नेदरल्याण्डसम्म जारी आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टू अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृंखला के चौथो तथा अन्तिम खेलमा अब नेपाल घरेलु टोली नेदरल्याण्डसँग प्रतिस्पर्धा गतिबाट कमजोर ब्याटिङ के कारण आज तीन खेलमा हटलक खेपलक नेपाल हास नेदरल्याण्ड्स विरूद्ध ब्याटिङ सुधार करपर्णबाट जितकी नेपालकै फिल्डर रोजल पाछ नेदरल्याण्ड्स शुरूमा ब्याटिङ गर्तीबाट नेपालीले आगो फेरि पहिलो खेलमा नाबियासँग 8 विकेट पराजित हुलै उसतक दोस्रो खेलमा नेपाल घरेलु टोली नेदरल्याण्डसँग 6 विकेट पराजित हुलक नेपाल तेस्रो खेलमा नामिबियासँग 3 रन से स्तम्भ बन्न रहे। लगातार हार खेप्टिरह नेपाल के लिगमा 31 खेलमा से 24 अङ्क जोड्दै छैटौं स्थानमा झर्लगवा समान खेलमा से 26 अङ्क बनेलक नामिबिया 5 औं स्थानमा बा 30 खेलमा से 36 अङ्क बनेलक नेदरल्याण्ड्स तेस्रो स्थानमा बा। आठ टोली सहभागी लुक टूमा 1 अवरोधन कुल 36 खेल खेल पाछ शीर्ष 4मा रहना टोली विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट हुन बा 1 दिवसीय मान्यता प्राप्त गर्न शीर्ष 6 स्थानमा अटाई पर्न हुल बा। यस समाचारसँग खोज खबर भयो। जनासे पहिले खबरको मुख्य शीर्षक फेरि एकचो। गुरु पूर्णिमा के अवसरमा टीका पुरेको आश्रम कार्यक्रम गुरु कलग अत्याधिकले चेतना के संसार गुरु पृथ्वी श्री के कहे। सुरपश्चिम के अस्पतालमा दोस्रो दिनमा फेरि आकस्मिक बाहेक सबको सेवा बन्द। कर्णाली मार्च मुख्यमन्त्री के शपथ। विश्वकप लिग टू नेपाल नेदरल्याण्ड स्मृति लिटा बुक्ला खोज खबर रह प्राविधिक मित्र दिपेन्द्र भट्टराई धन्यवाद डी टी अबुक्ला खोज खबर चाहिँ म सीता चौधरी बिदा हुन्छु। एक पाँच 6 बजे के खोज खबर सुन्न सक्दी सामुदायिक रेडियो टिकापुर सुन्छ।

0: नहीं कमिल सर।
1: आओ आओ, तू पैलेट से आई ना, मत झील कर दो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
0: कुछ नहीं हुई सर, पैलेट के पंद्रह सफा रख लू, सर लग के घूमत रहते हूँ, कैसे चेयर सा लग लो तो हलचल नहीं कर, मोल सपो कर के छापे ना तो पहला जाके
1: मोल सपो है ना, चलेना तो नहीं चलेगा ना,
0: नहीं चलेगा सर।
1: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा रहते कहो मोल सपो देखो कर से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपन मोला से की वाकर में रह बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाथ से पकड़ा नहीं बीत
0: सर नौ सप्पा देखना से क्या करना
1: सप्पा मुआल से देख पड़ना से थे जाग से मुआल नहीं रह सकत पकवा मुला कुछ देर पास संके सप्पा दस सकत वह उससे मुआल अवस्था में फिर सप्पा हाथ से चलाए नहीं बीत गेंद तो इतना मल अच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कैसा जाना से की था
2: मुआल सापन से सावधान रही मुआलवा मार गई सपोहना पकड़ना व खेलना जिन करी मुलक कुछ बेर बासे संकी सपवा दस से था संभव हुई सम सपो फोटो खींची व पहचान कला विज्ञान से संपर्क करी
3: सर्पदंश से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ बाकी था पता लगाए लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर सेफ्टी था
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे घुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक सीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनु

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ है ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
0: ला फेरी यो गाड़ी ले धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कै समस्या बैटरी कै समस्या यो टीकापुर मा पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेन्सन मा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहिनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर मा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टीकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 0915604070 र मोबाइल नम्बर 9848571828
7: टिकापुरको विकासका लागि के गर्दैछ नगरपालिका
8: नगर विकासका लागि नगरवासीको दायित्व के हुनुपर्छ
9: नगर विकासमा नागरिकको सहभागिता कसरी बढाउने र नगरपालिकाको काम कारबाही र सेवा प्रभाव बारे जानकारी दिने कार्यक्रम हाम्रो
7: टिकापुर टिकापुर नगर कार्यपालिकाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो टिका फ्रेटको उत्पादन कार्यक्रम हाम्रो टिकापुर हरेक साताको बिहिबार बिहान 7:30 बजे र पुनः प्रसारण
10: बिहिबार दिउँसो 3 बजे
7: सुन्न सक्नुहुनेछ।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछसे शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम को कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना।
3: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम का लागि तपसिल अनुसारको जनशक्ति आवश्यक परेकाले इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ।
1: जनशक्तिका विवरणहरू:
3: सहायक प्राविधिक संख्या एकजना पूर्णकालीन, योग्यता कम्तीमा 12 कक्षा उत्तीर्ण, रेडियो प्रविधिको बारेमा अनुभव र ज्ञान भएको।
1: पत्रकार संख्या एकजना थारूभाषी पूर्णकालीन, योग्यता कम्तीमा स्नातक रेडियो समाचार लेखन कार्यक्रम उत्पादन भएको र जियोग्राफी जानेको।
3: सहायक प्राविधिक संख्या एकजना आंशिक, योग्यता कम्तीमा 12 कक्षा उत्तीर्ण, अडियो भिडियो सम्पादन सिप भएको।
1: बजार प्रतिनिधि संख्या एकजना आंशिक, योग्यता लेखा बजार शास्त्र विषय लिई कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको स्नातकलाई ग्राह्यता।
3: समाचारदाता संख्या एकजना स्ट्रिङ्गर, अल्पसंख्यक थारू दलितलाई प्राथमिकता, योग्यता एसएलसी वा कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको, पत्रकारिताको अध्ययन वा अनुभवी।
1: पारिश्रमिक संस्थाको नियमानुसार हुनेछ। इच्छुक उम्मेद्वारले साउन 15 गतेसम्म आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र तालिम अनुभवका प्रमाणपत्र सहित सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएममा निवेदन पेश गर्नुहोला। थप जानकारी चाहिएमा फोन नम्बर 9811363633 सम्पर्क गर्नुहोला।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर वस्त बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं छिप ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कही एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग।

0: कार्यक्रम मझेरी मझेरी मझेरी।
1: भैया ना करा रेडू बिगड़ी
2: नहीं का मम्मी टीकापुर FM से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आईटा वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़ै चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

0: कालेबुङ नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
1: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
0: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
2: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर, कैलाली।
3: हेरिना काका, आई फुला टुरे बारीमा गेल रही सपो काट देली, बिस निकाल देबी कि कैके लैके आयल बाटो।
4: सपो कटलक बिसक उपचार कर त सर्पदंश उपचार केन्द्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई, वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ। बिखार सपो कटलक हो कि नहीं हो के पता लगा कर सर्पदंश उपचार में प्रयोग है ना, एंटी भेनम से उपचार कर।
3: सर्पदंश उपचार केन्द्र के विषय में मैं फिर सुनल त रहूँ
4: तर कुछ दिन कही आना तुरंत उपचार केन्द्र ले जा रही। नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एन्टी भेनम समेत निशुल्क उपलब्ध करे था, हस्तक्षेप चिन्ता लिए नहीं पड़त।
3: खाई ना तब ना तुम कुछ फेर नहीं हुई, मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बात।
4: एम्बुलेंस आ पुगना समय लागत के था, मर्छ संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केन्द्र में ले जा दी।
5: रे बाबू संदेश रोक झट बाहर आता।
6: सर्पदंश प्रभावित जिल्लामा बेरमेनका समयमा जो उपचारकै ख ज्यान जोगिन उद्देश्यले सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा बा। यी उपचार केन्द्रमा सर्पदंशक उपचार निशुल्क हुन्छ। सापनका कटाईले मनैनको मृत्यु नभएकै ख सरकार सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुन एन्टिभेनम निशुल्क उपलब्ध गराइला बा। आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र सम्पर्क नम्बर ठहरलरह पठा। सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइत लाग। आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेभ्दै था।
7: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।